0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. आज 22 जून 2026 की शाम घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब वक्त है दिन भर की खबरों और अहम अपडेट्स पर नजर डालने का. मैं हूं आपकी होस्ट भव्या पांडे और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और बुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ रहे सभी श्रोता जो कि SBS हिंदी पर आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहेंगे. मैं हूं भव्या पांडे और अगले एक घंटे तक हमारा साथ बना रहेगा जहां पर आपके लिए लेकर आऊंगी कुछ खबरें, कहानियां, विचार और बेहतरीन से गाने. तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर HS एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के पहुंचने के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खास जोखिम नहीं बना हुआ है, तो इसी पर आज विस्तार से और जानकारी लेंगे. इसके अलावा आज के कार्यक्रम में मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने में जुटी हुई हैं. कौन है ये आपको जल्द बताऊंगी और इस बातचीत का पहला भाग आज आप तक लेकर आऊंगी. इसके अलावा कार्यक्रम में आगे बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हाल के महीने में ऑस्ट्रेलिया में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है यानी एंटी सेमिटिज्म. सार्वजनिक सुनवाई में गवाहों की गवाही का पहला चरण पूरा हो चुका है लेकिन इस बहस के बीच बच्चों और युवाओं के मन में कौन से सवाल उठ रहे हैं और परिवार इन सवालों का जवाब कैसे दे रहे हैं यही आज जानेंगे और साथ ही भारत से कुछ खबरें भी आप तक लेकर आऊंगी. साथ ही आपको बता दूं कि संगीत का सिलसिला भी पूरे घंटे जारी रहेगा और कोई भी मनपसंद गाना यदि आप सुनना चाहते हैं तो बता सकते हैं मुझे. नंबर है 04397997667. चलिए अब आपको आज का सवाल भी बता देती हूँ. तो दोस्तों, हाल ही में मैंने देखी कॉकटेल 2 जो कि बहुत ही चर्चा में थी क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट था कॉकटेल वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आया था. लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मुझे ये जो सेकेंड पार्ट है ये इतना पसंद नहीं आया. तो यही आपसे आज जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका पहला भाग आपको बहुत अच्छा लगा हो लेकिन जो सेकेंड पार्ट है वो किसी कारणवश इतना पसंद नहीं आया. भेजें मुझे अपने जवाब 04397997667 पर और कोशिश करूंगी कि आपके दिए हुए गाने आज आपके लिए बजा सकूं. चलिए, और भी खूब सारी बातें आज हम करेंगे लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और विश्व भर में क्या कुछ चल रहा है. प्रस्तुत है 22 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ. सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका और ईरान के बीच हुई अहम बातचीत पर. अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत का पहला दौर समाप्त हो गया है और दोनों पक्ष तकनीकी स्तर की वार्ताएं जारी रखने पर सहमत हुए हैं. ये एक आमने सामने की बैठक थी जो मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रही. दोनों पक्ष मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव को कम करने की

0: कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बातचीत आसान नहीं रही। प्रमुख मुद्दों में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत, उसकी जमी हुई संपत्तियों की वापसी और लेबनान के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं शामिल रहीं, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब चलते हैं यूरोप की ओर। रूस का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में क्रीमिया में 4 लोगों की मौत हुई है और 28 लोग घायल हुए हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में एक तेल परिवहन सुविधा पर हमले की पुष्टि की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब यूक्रेन रूस की ऊर्जा आपूर्ति को निशाना बनाकर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। रिचर्ड माल्स ने कहा है कि देश H5 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि देश में इसका पहला मामला सामने आया है। ये मामला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ब्राउन स्कुआ समुद्री पक्षी में पाया गया है, जिसकी आइसोलेशन के दौरान मौत हो गई। ऐसे में सरकार का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और आम जनता के लिए जोखिम बेहद कम है, लेकिन निगरानी और रोकथाम के कदम लगातार जारी हैं। आइए बात करते हैं एक आर्थिक अपडेट पर। ईंधन पर राहत एक और महीने तक जारी रहेगी, लेकिन इस बार कम दर पर। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने घोषणा की है कि फ्यूल एक्साइज रिलीफ को 32 सेंट से घटाकर 16 सेंट कर दिया जाएगा। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ संभावित शांति समझौते की बात कर रहे हैं, हालांकि तेहरान की ओर से अभी भी सतर्क रुख अपनाया गया है। NRMA के प्रवक्ता पीटर खोरी का कहना है कि इस फैसले का वैश्विक ईंधन कीमतों पर तत्काल कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि एक्साइज में कटौती से कुछ सड़क परियोजनाओं में देरी हो सकती है। ग्रीन्स की विदेश मामलों की प्रवक्ता डेविड श्रूब्रिज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये कदम महंगाई से राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है और विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पेन ने वर्ल्ड कप में केप वर्डे के खिलाफ हुए चौंकाने वाले ड्रॉ के बाद जोरदार वापसी की है और सऊदी अरब को 4-0 से हरा दिया है। अटलांटा में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन के सेंटर फॉरवर्ड माइकल ओयारज़बल ने पहले हाफ में 2 शानदार गोल दागे, जिससे स्पेन ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली और एक मजबूत जीत दर्ज की। बात करें भारत की, तो महाराष्ट्र में हुए MLC चुनावों में नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट हो गए हैं। 17 सीटों में से 16 सीटों पर सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना और NCP ने जीत हासिल की है। इसमें से एक सीट विपक्ष को मिली है। नतीजों में महायुति की बड़ी जीत हुई है। वहीं नासिक सीट पर BJP के बागी ने एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार का खेल बिगाड़ दिया और नासिक में उनके कैंडिडेट नरेंद्र दराडे को निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते से हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश, और आइए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू की। तो ऑस्ट्रेलिया में HS एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के मेन लैंड तक पहुंचने के बाद से लेकर वैज्ञानिकों और संबंधित एजेंसियों की निगरानी अब जारी है। हालांकि अभी हालात गंभीर नहीं माने जा रहे हैं और सरकार इसे फैलने से रोकने के लिए अपना पूरा काम कर रही है। तो आइए सुनते हैं इसी पर ये बड़ी खबर नबील हसन के साथ।
1: अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड पर H5 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। ये वायरस एक जंगली प्रवासी समुद्री पक्षी यानी माइग्रेटरी सी बर्ड में पाया गया, जो पर्थ के दक्षिण में स्थित एस्पेरांस के एक दूर दराज समुद्र तट पर बीमार अवस्था में मिला था और बाद में उसकी मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस वायरस के देश में पहुंचने की आशंका पहले से थी और वो उसके लिए तैयारियां कर रहे थे। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। ये मामला एक ब्राउन स्कुआ पक्षी से शुरू हुआ, जो पर्थ से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित एस्पेरांस के पास एक दूर दराज समुद्र तट पर 14 जून रविवार को मिला था। बाद में इस पक्षी की मौत हो गई। फेडरल कृषि मंत्री जूली कॉलिन्स ने बताया कि विक्टोरिया के शहर जीलोंग स्थित CSIRO प्रयोगशाला में की गई जांच से अब ये स्पष्ट हो गया है कि पक्षी किस प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त था।
2: Testing at CSIRO's Center for Disease Preparedness has confirmed the

0: H5 high pathogenic avian influenza or bird flu in a brown skua in Western Australia.
1: ये केस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सामने आया है और ये पहली बार है जब H5 स्ट्रेन ऑस्ट्रेलिया की मेनलैंड तक पहुंचा है। इससे पहले इसे अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के सब अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित हर्ड आइलैंड पर पाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ टैस्मानिया के इंस्टीट्यूट फॉर मरीन एंड अंटार्कटिक स्टडीज की सी बर्ड रिसर्चर डॉक्टर लॉरेन रोमैन का कहना है कि ये पूरी तरह से बुरी खबर नहीं है।
2: I think what's really positive about this detection is that the messaging that Wildlife Health Australia and the Australian government has put out there so that wildlife carers have been aware for quite a few years now of the possibility of this particular strain of bird flu reaching Australia. So even though I wasn't involved in this particular case, it's a great sign that the wildlife carers, by the sound of it, knew what to look out for. And then when the first detection did occur, they were prepared and took the appropriate measures.
1: Dr. Roman ka kehna hai ki abhi ye saaf nahi hai ki ye mamla kisi bade outbreak ki shuruaat hai ya nahi. Filhal visheshagya ise incursion yani kisi cheez ka kisi kshetr mein pehli baar pravesh maan rahe hain, jabki outbreak ka matlab hota hai ki kisi bimari ka achanak phailna aur mamlon mein tezi se badhotri hona. न्यू साउथ वेल्स की एनवायरनमेंट मिनिस्टर पेनी शार्प का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये वायरस किसी समय राज्य तक भी पहुंच सकता है।
3: We obviously hope that it doesn't come here, but birds fly a long way and we can't put them in cages. We're expecting that we may see it here.
1: लेकिन फेडरल एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जूली कॉलिंस का कहना है कि मौजूदा स्थिति बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है।
0: Whilst disappointing, this is not unexpected given the global spread of the H5 bird flu virus. I can confirm that there's still no evidence of any mass mortalities at this time, nor is there any evidence of infection in any poultry.
1: फिर भी H5 स्ट्रेन के आने से वैज्ञानिकों, संरक्षणकर्ताओं और कृषि से जुड़े समूहों में चिंता बढ़ गई है। जब H5 स्ट्रेन हर्ड आइलैंड पर पाया गया था, तब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि सब अंटार्कटिक क्षेत्र में लगभग 14,000 सदर्न एलिफेंट सील के बच्चे इस बीमारी से मर गए थे। ये कुल आबादी लगभग 17,000 से अधिक थी। डॉक्टर रोमन का कहना है कि विदेशों में हुए आउटब्रेक्स में बड़े पैमाने पर जानवरों की मौतें और किसी प्रजाति की आबादी में भारी गिरावट जैसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।
2: Sea lions have been particularly hard hit across many, many countries, as well as in the sub-Antarctic. So this is a real concern if it does get into sea lions in Australia, which is, it's a possibility if we get outbreaks in the country. It's also hit surface nesting seabirds really heavily as well. So birds like pelicans, cormorants, boobies, gannets, terns, these sorts of species have seen mass mortalities. So in some countries, you've had hundreds of thousands of birds dying over a space of months.
1: Federal Minister aise halaat ko rokne ke liye puri koshish kar rahe hain. Julie Collins ka kehna hai ki federal sarkar ne pehle se hi 100 se adhik yojnaye taiyar kar rakhi hain jo mahatvapurn prakritik kshetron aur samvedanshil prajatiyon ki suraksha ke liye banayi gayi hain. New South Wales mein Minister Sharp ka kehna hai ki har star par adhikari pehle se hi मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस वायरस से निपटा जा सके।
3: Both federal and state governments have been preparing for this. Literally had some emergency practice preparations even just a couple of months ago in relation to this. So all of those activation plans are being put in place. We're working really carefully with the federal government.
1: इस बीच अन्य विशेषज्ञ मानव स्वास्थ्य पर इसके असर को लेकर लोगों की चिंता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट संजय सनानिगीका का कहना है कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर सरकार इस स्ट्रेन के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाती है।
4: From a human point of view, we have seen a few cases, but it's not easy for a human being to get this. It's typically from infected poultry to humans. In the US, we've seen it go from cattle to humans as well. But human cases with this particular strain of bird flu are not common, and the most cases tend to be mild.
1: SBS News के डेबरा ग्रोर की ये रिपोर्ट SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने।
5: तो दोस्तों यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौट कर सुनेंगे भारत से खबरें और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहें SBS हिंदी।

0: को एक नाटी प्रमाणित दुभाषिये ने अनुवादित किया है।
1: This ad is interpreted by a Naati certified interpreter.
0: एक प्रमाणित दुभाषिये के साथ आप जो कहना चाहते हैं उसे हिंदी में ठीक वैसे ही कह सकते हैं।
1: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Hindi.
0: और आपकी कही हुई बात प्राइवेट रहती है और बदलती नहीं है।
1: And what you say stays private and unchanged.
0: क्योंकि हम सब का ये अधिकार है कि हमारी बात को समझा जाए।
1: Because we all deserve to be understood.
0: एक नाटी प्रमाणित दुभाषिये के लिए पूछें। naati.au/interpreter पर और अधिक जानकारी पाएं।
2: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS Learn में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
3: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
4: SBS Audio
5: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
6: यही चाहता था भैया। चुम्बे हाल में।
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
11: Far from the partisan politics.
12: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
13: sbs.com.au/audio।
14: तो दोस्तों SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। आपको बता दूं कि वक्त हो रहा है 5:16, और यदि आप आज के कार्यक्रम में मेरे साथ ज़रा देरी से अभी जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi और साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर जाकर ये सभी खबरें और प्रोग्राम फिर से सुन सकते हैं। और यदि आपने हमें अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर हम ऑस्ट्रेलिया और विश्व भर की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो एक अलग अंदाज में आप तक लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आज का सवाल बता देती हूँ। आज मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे कोई ऐसी फिल्म बताइए जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आपको बहुत पसंद आया हो, लेकिन उतनी उम्मीदों के साथ जब आप थिएटर में गए और आपने उसका सेकेंड पार्ट देखा तो आपको इतना मज़ा नहीं आया। भेजिए अपने जवाब मुझे 04397997667 पर। और जब तक आपके संदेश मेरे पास आ रहे हैं, आइए सुनते हैं भारत की खबरें।
15: स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को

0: hits from home.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा, यह अटूट भरोसा बना रही है मेरे, उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा।
4: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए मोदी सरकार से पुख्ता इंतजाम करने का आग्रह किया।
5: To everybody taking the re-NEET exam, hope you have a really wonderful, excellent exam, and you all do really, really well. Remember, we're with you. We want to look after you, protect you, and make sure that you have a brilliant future. Love all of you. To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please, please, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again. All the best. Thank you very much. Love you again.
4: लेकिन रविवार सुबह की शुरुआत हैदराबाद में 19 साल की एक नीट छात्रा द्वारा आत्महत्या की बुरी खबर से हुई। परीक्षा के बाद जहां एक और छात्रों और अभिभावकों ने कड़े सुरक्षा इंतजामों पर संतुष्टि जताई, वहीं दूसरी ओर फिर से पेपर लीक होने का डर भी जाहिर किया। बहरहाल अभी तक पेपर लीक होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले यह परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया था। सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में अब तक 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि लगभग 1.5 दर्जन छात्र छात्राएं खुदकुशी कर चुके हैं। इस बीच नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा। सीजेपी ने शनिवार सुबह प्रदर्शन शुरू किया था और उसे शाम 5 बजे तक ही इसकी अनुमति थी, लेकिन संस्थापक अभिजीत दीप के समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी रविवार को भी वहां मौजूद रहे। हैरानी की बात यह रही कि दिल्ली पुलिस उनसे धैर्यपूर्वक धरना स्थल छोड़ने का अनुरोध करती रही और कोई भी बल प्रयोग नहीं किया। प्रदर्शनकारी थाली बजा शिक्षा मंत्री के विरोध में गो प्रधान गो के नारे लगाते नजर आए, जबकि श्री दीप के सीधे प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करते नजर आए।
6: अभी तक हम ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इज एन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर, बट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप उनको सैक नहीं करते हैं, अगर आप उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं, तो आपसे बड़ा इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री की इतिहास में कोई नहीं है।
4: अयोध्या राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए से अधिक की कथित चोरी पर विपक्षी पार्टियों और आम जनता का कोप झेल रही भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आज सौंपी जा सकती है। चढ़ावे और गहनों की चोरी, जिसमें रामलला के गले का हार और कई अन्य आभूषण शामिल है, की जाँच कर रही SIT ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, व्यवस्थापक गोपाल राव, संस्थापक सदस्य अनिल मिश्रा, चंपत राय के करीबी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और गोपाल राव के रिश्तेदार सोमेश आनंद को अयोध्या छोड़कर न जाने की चेतावनी दी है। चढ़ावा चोरी मामले में 5 लोगों की निशानदेही पर अभी तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई है। SIT के रडार में कुल 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 25 पर कार्यवाही के आसार हैं। मुख्यमंत्री के यह कहने के बावजूद कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चोरी की इस खबर के बाद से राम मंदिर में रोज के चढ़ावे में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमी आई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा भारत के धार्मिक स्थलों के बारे में की गई टिप्पणियों को भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति जरदारी ने शनिवार को ट्वीट के माध्यम से भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों, जिनमें वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा भी शामिल है, को गिराए जाने

0: को लेकर और मुसलमानों को दी जा रही धमकियों पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने भारत को ऐसी कार्रवाइयां तुरंत रोकने को कहते हुए चेतावनी दी थी कि इससे भारत के टूटने और वहां हमेशा के लिए अराजकता फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने ऐसी कार्रवाइयों को तुरंत रोकने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व साझा सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करने की अपील भी की थी। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के माध्यम से कहा कि राष्ट्रपति जरदारी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, ये टिप्पणियां इसलिए भी बेतुकी हैं क्योंकि मानव अधिकारों के मामले में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड बहुत खराब है, जिस पर दुनिया भर में चर्चा होती रही है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि अलग अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने और उनका उत्पीड़न करने का पाकिस्तान का इतिहास लंबा और जग जाहिर है। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है। FATF को दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली सबसे अहम संस्थाओं में से एक माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह नियुक्ति आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति और वैश्विक स्तर पर आतंकियों की फंडिंग रोकने के प्रयासों को और मजबूती देगी। 1994 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल फिलहाल संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। भारत में, खास तौर से उत्तर भारत में, शहरों के फुटपाथ के घिरे होने से लोगों को चलने में अक्सर परेशानी होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को सभी सड़कों के फुटपाथ को चिन्हित कर खाली करवाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चांदुरकर की पीठ ने एक 5 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि संविधान के भाग 3 के अनुसार चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह मोटर वाले वाहनों की आवाजाही से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रविवार 21 जून को भारत और दुनिया भर के कई देशों में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में योग दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां ऐतिहासिक रेड रोड पर हजारों लोगों ने योग किया। इस बार के योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी बढ़ती उम्र के लिए योग था, जिसका मकसद यह बताना था कि योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं बल्कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर, मन और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने का तरीका है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 साल की उम्र में 20 साल की उम्र से ज्यादा लचीले होना, 50 साल की उम्र में 30 साल से अधिक ऊर्जावान और 70 साल की उम्र में 50 साल से ज्यादा स्वस्थ रहना होना चाहिए। योग दिवस पर फौजी जवानों ने पहाड़ों, रेगिस्तान और समुद्री पोतों पर, बच्चों ने स्विमिंग पूल में, फिल्मी सितारों ने मुंबई के आजाद मैदान में और बंगाल के जल्दापाड़ा वन विभाग कर्मचारियों ने हाथियों पर आसन कर लोगों को योग के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये हमने सुनी खबरें भारत से और यहाँ पर वैसे तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सोच रही हूँ कि ब्रेक से पहले आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाया जाए। तब तक आप मुझे 04397997667 पर बताएं कि आज की शाम यानी मंडे की शाम आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ SBS हिंदी पर।

तो दोस्तों यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बता दूं कि आज की शाम का पहला संदेश मुझे आया है हिमेश पांचाल जी की ओर से, जो कि बता रहे हैं कि गदर जो मूवी थी वो उनको बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जो गदर 2 आई थी वो इतनी कोई खास उनको इम्प्रेसिव नहीं लगी। और यही था आज के मेरे सवाल का जवाब। आप भी मुझे बताएं कोई ऐसी मूवी जिसका पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ही बढ़िया लगा लेकिन सेकेंड पार्ट इतना अच्छा नहीं लगा। नंबर है 0439799767। और हिमेश जी आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आगे कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहेंगे।

0: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए सातों दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
1: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
2: SBS South Asian, play.

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: SBS World News. ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS World News हर रात 6:30 बजे SBS और SBS On Demand पर। SBS On Demand पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS On Demand ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
2: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है। sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
3: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। और इसी के साथ हमारे जो श्रोता हैं पीयूष जी का हमें संदेश आ गया है और नमस्ते कह रहे हैं। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूं आप हमारे साथ कार्यक्रम में आगे बने रहेंगे, क्योंकि ये जो अंश आ रहा है ये है बहुत ही दिलचस्प। तो स्टार्टअप्स और टेक्निकल बिजनेस लीडर्स की समर्थक जैस्मिन बत्रा क्वींसलैंड में रहती हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिजनेस कल्चर और व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देने में एक अनोखी भूमिका निभा रही हैं। इस अंश में सुनिए कि वे दोनों देशों के बीच अवसरों और साझेदारी को कैसे देखती हैं और इसे कैसे मजबूत बना रही हैं। आपको बता दूं कि ये जो बातचीत है ये दो भागों में है और इसका पहला भाग हम आपको आज सुना रहे हैं, दूसरा भाग कल के कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिलहाल सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
4: नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन क्या दोनों देशों के निवेशक एक दूसरे के कारोबारी माहौल और अवसरों को पूरी तरह समझते हैं? क्या उनकी धारणाएं और अपेक्षाएं वास्तविक परिस्थितियों से मेल खाती हैं? इस अंश में हम आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से करा रहे हैं जो क्वींसलैंड में रहती हैं। जैस्मिन बत्रा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की मजबूत समर्थक रही हैं। उन्होंने कई बिजनेस एक्सेलरेटर कार्यक्रमों में प्रमुख मेंटोर के रूप में काम किया है और उभरते हुए एंटरप्रेन्योर तथा बिजनेस लीडर्स को अपने व्यवसाय को विकसित करने और विस्तार देने में मार्गदर्शन प्रदान किया है। आपको बता दें ये अंश हम आपको दो भागों में सुनाएंगे, सुनिए इसका पहला भाग। सबसे पहले जैस्मिन, आपका SBS हिंदी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बिजनेस सेंस है उसमें कितना बड़ा गैप है, कितनी कमी है दोनों निवेशकों को एक दूसरे के बारे में समझने में?
5: अभी बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है दोनों तरफ। पिछले 3 सालों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है कि लोग समझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में कि इंडिया की टेक्नोलॉजी राइज के बारे में। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है ये लोग समझते हैं, बट उस पॉपुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक वन साइज फिट्स ऑल तरीका नहीं है, दैट इज एक मिस इन्फॉर्मेशन। और इंडियन कंपनीज जो ऑस्ट्रेलिया के को जानना चाहते हैं वो उसको एक बहुत ही स्मॉल मार्केट समझते हैं, तो देखते नहीं है। बट ये ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी और R&D में जो एडवांसमेंट है, जो हमारे कंप्लायंस के रूल्स हैं, अगर आप एक इंडियन कंपनी होते हुए आपने ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुली अपना प्रोडक्ट इस्टेब्लिश कर लिया तो आप US UK भी बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो

0: Hits from Home.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: It's just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं. बहुत सारे नए टैरिफ्स हैं, बहुत सारे ग्रांट्स हैं. तो वो उनको समझाना कि कहाँ पर गैप है, जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो उस अवेयरनेस के बारे में अभी भी बहुत काम बाकी है.
5: जी, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला प्रश्न होता है कि कैपिटल रेज कहाँ से किया जा सके, पैसा कहाँ से लाया जा सके. तो ये बताइए कि आपका सुझाव, सबसे पहला कॉल किसे किया जा सके जो ऑस्ट्रेलिया से भारत में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रहेगा?
4: हमारी ये रिकमेंडेशन हमेशा रहती है कि आप दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपनी डोमेस्टिक कंट्री में वैलिडेशन, कस्टमर्स, कैपिटल रेज वहाँ करो, क्योंकि वो जहाँ आप समझते हो. उसके बाद ये सोचना कि ये जिस तरह चलता है सीधा वैसे ही दूसरी जगह अप्लाई हो जाएगा, वो नहीं होगा. कैपिटल रेजिंग अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है क्रॉस बॉर्डर बिजनेस में. तो हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि पहले आप अपनी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक लेवल पे स्केल करो, और जब आपने वो करा तो उस कैपिटल से आपके इन्वेस्टर्स जब ये देखें कि अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप इंडिया जाना चाहते हो जो बड़ी मार्केट है, तो वो अपने आप आपका बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो नया कैपिटल रेज करना आसान होता है. तो हमारा उनके को यही इनकरेजमेंट रहता है कि नई मार्केट को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, और कुछ गलत डिसीशंस बहुत जल्दी बिजनेस को बैक ले जाते हैं. अगर आपको एक कम्युनिटी ऑफ फाउंडर्स मिलती है, जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स प्रोग्राम के हैं, वो कहते हैं कि उनके लिए सबसे वैल्यूबल चीज़ है दूसरे लोग जो उसी जर्नी में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जा रहे हैं, उनके साथ जब वो बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके एप्रिहेंशन समझते हैं, तो उनको वो चीज़ कोई इंटरनेट में गूगल करके नहीं मिल सकती. वो सिर्फ लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए साथ ही मिलती है, और हमारा प्रोग्राम वो एक कम्युनिटी बनाता है.
5: तो जैसा आप बता रही हैं जैस्मिन, आप इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, इस गैप को कम करने में लोगों की मदद कर रही हैं. तो ऐसा इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं. आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया ये काम शुरू करने के लिए?
4: जब मैंने बिग लीप शुरू करा, वो शुरू हुआ इस गैप को देख के कि बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन कंपनीज जो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी बना रही हैं, वो यूएसए या यूके जाना चाहती हैं टू एक्सपैंड. और मुझे वो गैप दिख रहा था कि इंडिया के बारे में अभी भी बहुत कम अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन बहुत स्केची है, लोग पूरी तरह समझ नहीं पा रहे कि वहाँ पर क्या राइज है टेक्नोलॉजी की. इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी ऑस्ट्रेलिया में इतना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी. उस दैट वाज मेरा रीज़न टू लॉन्च बिग लीप. तो ये प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है जो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए, उसको समझने के लिए और वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी पहुँचाने के लिए है. हमने कुछ टाइम ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ को इंडिया लेके गए, और बहुत ही जल्दी ये समझ में आ गया कि इंडियन कंपनीज़ के लिए जो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी एप्लीकेशन है. तो अब ये क्रॉस बॉर्डर दोनों तरफ चलता है. हम ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ को इंडिया मार्केट के बारे में बताते हैं, पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उनको वहाँ लेके जाते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, और उसी तरह हम इंडियन कंपनीज को ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और फिर उनको ऑस्ट्रेलिया में लेके आते हैं.
5: तो ये था इस अंश का पहला भाग. दूसरा भाग सुनने के लिए बने रहें SBS हिंदी के साथ, और ये पूरा पॉडकास्ट आप SBS हिंदी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं.
6: तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आई थी नताशा कॉल, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा भाग जो होगा वो

0: हम कल के कार्यक्रम में आप तक लेकर आएंगे। चलिए आपको बता दूं कि आज मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया हो लेकिन दूसरे पार्ट से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करके घर आए हो। तो इस पर मुझे संदेश आया है, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं, हाय SBS टीम, इनको हाउसफुल 1 बहुत अच्छी लगी थी लेकिन उसके बाद जो उसके पार्ट्स आए हैं इतने कुछ खास नहीं लगे हैं। नाम इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन अपनी मूवी बता दी है और कहीं ना कहीं मैं इनकी बात से अग्री करती हूँ। ऐसी कई सारी फिल्म्स हैं जिसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। जैसे अगर आपने नई वाली गोलमाल देखी हो तो बहुत ही कमाल की, वो एक ट्रायोलॉजी बनाने की उन्होंने कोशिश की लेकिन पहली वाली जितनी कमाल की थी बाकी की फिल्मों में इतना मज़ा नहीं आया। इसके अलावा एक और संदेश मुझे पीयूष जी ने भेजा है, उन्होंने भी गदर का नाम लिया है कि गदर वॉज बेटर और गदर 2 उन्हें इतनी पसंद नहीं आई है। इसके अलावा हिमलता पुरोहित जी का संदेश आ गया है, नमस्ते भव्या जी एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम। तो ये सभी संदेश मेरे पास अब तक आ गए हैं और आप भी मुझे 04397997667 पर बताएं कि आज की शाम आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तब तक लेते हैं आज की शाम का आखिरी ब्रेक और फिर लौटकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी।
1: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेक वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
2: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
3: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। Alexa, Google Home या Apple Smart Speaker के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
4: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
5: SBS kickoff.
6: A new music station celebrating football anthems from around the world.
7: It's time for Africa.
8: It's live now
6: on DAB Radio, the SBS audio app.
7: We got the game
8: on. Online and SBS on demand.
9: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। और अब बात करते हैं एंटी सेमिटिज्म की। तो ऑस्ट्रेलिया में एंटी सेमिटिज्म के अपने अनुभवों के बारे में गवाहों से गवाही का पहला हिस्सा सुना जा चुका है। हर उम्र के बच्चों के मन में एंटी सेमिटिज्म के बारे में सवाल होते हैं। SBS एग्जामिन्स के इस अंश में बात इसी विषय पर और इस अंश को आज आप तक लेकर आ रही हैं अनीता बराज।
10: एंटी सेमिटिज्म और सोशल कोएलिशन पर रॉयल कमीशन का काम चल रहा है। इससे पहले ही हजारों सबमिशन मिल चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया में एंटी सेमिटिज्म के अपने अनुभवों के बारे में गवाहों से गवाही का पहला हिस्सा सुना जा चुका है।
11: एंड द फैक्ट दैट दिस इज बीइंग फेल्ट बाय द यंगेस्ट एंड द मोस्ट वल्नरेबल आवर चिल्ड्रन इज फ्रैंकली डेवास्टेटिंग।
10: यहूदी स्कूलों और डे केयर सेंटर्स में आगजनी और ग्रेफिटीज के मामले, यहूदी बच्चों के साथ गाली गलौज और सिक्के फेंकना, स्कूल असाइनमेंट में क्लासमेट्स का नाजी सिंबल बनाना, नाजी सलूट करना। अमेंडा गार्डन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने SBS एग्जामिन्स को बताया कि सलाह के लिए उनके पास आने वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है।
12: Children are coming in with questions though, like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
10: इस सप्ताह SBS एग्जामिन्स में हम पूछ रहे हैं कि हमें बच्चों से एंटी सेमिटिज्म के बारे में कैसे बात करनी चाहिए। और SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता।

0: parar.
1: Children of different ages need different responses, and it's really important not to lump them all in together for so many reasons.
0: Amanda Gordon ne kaha ki chote bachchon ko surakshit, emotionally controlled aur wo jaise hain us par garv mehsoos karane ki madad ki jani chahiye. Sabhi bachchon ke liye diversity ki value seekhna aavashyak hai.
1: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
0: Olga Ventrop Alhaya, ek early childhood teacher aur early childhood centers ke liye compliance advisor hain. उन्होंने कहा कि जब छोटे बच्चों के मन में एंटीसेमिटिज्म के बारे में सवाल होते हैं तो ये आवश्यक है कि उनसे दूर नहीं हटें।
2: If the child asks you, that means the child noticed that and this is something important to address. You don't need to provide some political explanations, but you can talk about fairness, the being kind, the being respectful, and that can be taught when the children are very young.
0: ये कुछ ऐसा है जिसका उदाहरण उन्हें हाल ही में अपने बच्चों के सामने भी अपनाना पड़ा है।
2: My friend's daughter was killed in the Bondi's attack, and we went to Bondi Beach 1 week afterwards, and we participated in the event. My children came with me, so they saw me actually standing in solidarity with the community. So I think it also affects them. They see how their parents behave and what they do.
0: Amanda Gordon ने कहा कि प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चों को ये सिखाना आवश्यक है कि वो सिर्फ देखते ही नहीं रहें बल्कि एक दूसरे का ध्यान रखें।
1: We need to teach them that it's okay for people to have different opinions about countries or politics, that it's never okay to blame or threaten ordinary people just because they're Jewish. And we want to help children, non-Jewish and Jewish children, remain curious. We need children to be allowed to ask questions, but we have to be able to answer them.
3: It's not if they've seen anti-Semitism, it's when they've seen anti-Semitism. Teenagers spend half of their waking hours online, and I don't know if you've seen a comment section recently, but it's gonna feature anti-Semitism at some point, unfortunately.
0: Shoshana ek school mein teacher hain. Unhone kaha ki teenagers ke saath anti-Semitism ke bare mein baatcheet karna mushkil hota hai, kyunki unhe shayad ye pata nahi hota ki wo online jo content dekhte hain, wo kahan se aata hai.
3: You've got hundreds of thousands of young people using memes and making jokes where they think they're making a joke, but they are participating in, again, really old forms of anti-Semitism.
0: Shoshana ne kaha ki jab wo in memes ke bare mein batati hain, to unke students aksar hairan reh jate hain.
3: And they say, what is Goyslop? And you have to explain, well, there's a conspiracy theory that the Jews are manufacturing processed food to control half of the non-Jewish population. And they look at you and they say, that's crazy. Like, it's just a silly joke on the internet. And you have to say, no, it's not a joke, because that's the roots of it.
0: Halanki teenagers ko privacy dene aur unke suraksha ke beech line khichna mushkil hai. Lekin Shoshana ka manna hai ki ye monitor karna aur baat karna aavashyak hai ki teenagers किन ऑनलाइन स्पेस में इंटरेक्ट कर रहे हैं।
3: It's not just anti-Semitism, right? We're seeing like these huge waves, new waves of misogyny and racism. You have to be able to just talk to them about it frankly and point out to them, model to them what rational thought looks like when it comes to things like anti-Semitism and racism.
0: हर साल लगभग 35,000 स्कूली छात्र सिडनी यहूदी म्यूजियम आते हैं जहां वे होलोकॉस्ट सर्वाइवर से मिल सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। सबसे आम और एक स्वाभाविक सवाल ये हो सकता है कि क्या आप हिटलर से मिले थे? सैंडी हॉलिस म्यूजियम में एजुकेशन हेड हैं।
4: But then you get reflective questions like, can you forgive the people who did this to you? Or what is the one message that you would like to leave with us? Without fail, without exception, every survivor leaves a message of hope for the future. Every survivor talks about the need to stand up and about the dangers of hate and intolerance.
0: वो कहती हैं कि स्कूल अपने स्टूडेंट्स को वर्कशॉप के लिए म्यूजियम ले जा सकते हैं जिससे उन्हें क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। म्यूजियम को बढ़ाया जा रहा है जिसमें एक नया सेक्शन होगा जो आज के यहूदी जीवन पर फोकस करेगा.
4: Most people in Australia would never meet a Jewish person because it's such a small community. So this is an effort to demystify, to show people the beauty of Jewish life. We are also building a response to anti-Semitism in Australia, including the Bondi massacre. And if we're talking about contemporary Jewish life, that's a reflection of the world that we're living in today.
0: Bondi ka jawad. Bondi आतंकी हमले में निशाना बनी कम्युनिटी एंटीसेमिटिज्म के सबसे गंभीर असर का सामना कर रहे युवाओं को सपोर्ट कर रही है. रब्बी मैंडी उलमान ने कहा कि मंडली के बच्चों ने सलाह मांगी है. हमले में 15 लोग मारे गए जिसमें बोंडाई के चबाट के नेताओं में से एक रब्बी एली शेंगलर भी शामिल थे. हमले से कुछ महीने पहले रब्बी शेंगलर प्रोजेक्ट NOAH पर काम कर रहे थे. ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसका मकसद ज्यूइश आम जीवन के बारे में गलतफहमियों को दूर करना था.
5: He wanted to bring light, and one of the ways that he thought that he could bring light is to invite people into our synagogue, show them our space, show them how we bake challah, traditional bread on a Friday, how much fun we have as a community.
0: ये एवी समर्स हैं. वो रबी शेंगलर की असिस्टेंट थी और प्रोजेक्ट NOAH का काम जारी रखे हुए हैं.
5: Part of the tour is we do a Q&A with Rabbi Ullman, and I say, please, there is no question off limits. I really want people to ask questions that have been on their mind, whether it's controversial or not.
0: एवी का कहना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स एंटीसेमिटिज्म का मुकाबला करने और समझ बनाने में मदद करते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए.
5: I think that there's a lot of misinformation out there. I think that social media really feeds into that misinformation. And I think that if we can provide a really positive experience for people and a happy experience and something that really enlightens them and provides that education, you can't go wrong.
0: रबी उलमान ने कहा कि एकजुट समाज के तौर पर आगे बढ़ने का रास्ता सबके बीच प्यार और सम्मान से होकर जाता है.
6: There are values that we all can agree on. If we can just meet up face to face with each other and not be keyboard warriors and actually start having those conversations about what are our commonalities, what actually brings us together as human beings, and I believe that we can do that.
0: SBS Examines के लिए लेरा श्वेस और डेनिस फेंग के इस एपिसोड को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता परार ने. अधिक जानकारी के लिए www.sbs.com.au/examines पर जाएं.
7: तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आई थी अनीता बरार, और सोच रही हूँ कि आज आपको कुछ बढ़िया से गाने सुना दिए जाएं. जाने से पहले तो ये है मेरी एक बहुत ही फेवरेट फिल्म का गाना, जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों मुझे बहुत पसंद आया था. आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो फिल्में जिसका पहला पार्ट लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन दूसरा वाला इतना नहीं भाता. और कुछ और संदेश मुझे आए हैं. इन्होंने नाम नहीं लिखा है और फिल्म भी शायद नहीं बताई है, लेकिन कह रहे हैं बोथ पार्ट्स आर गुड बट द फर्स्ट वन हैज़ मोर क्रिएटिविटी. संदेश आया है पानव जी की ओर से, तो पता नहीं कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं. हो सकता है एक और संदेश अगर ये भेज दें तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी फिल्म के बारे में ये बात कर रहे हैं. इसके अलावा मुझे एक संदेश आया है पीयूष जी का, जिन्होंने अपनी थोड़ी सी नाराज़गी हमारे सामने रखी है. बता रहे हैं कि जब भी ये कोई गाना रिक्वेस्ट करते हैं तो अक्सर इनका जो गाना होता है वो हम उसी दिन उस शो में नहीं बजा पाते हैं. तो आपने अपनी बात कही है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आने वाले अपने थर्सडे के शो में आप सभी के जो रिक्वेस्टेड गाने हैं वो मैं बजा सकूँ. और आप इसी तरह से अपने जो सजेशंस हैं वो हमारे पास भेजते रहिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो आखिर चाह क्या रही है, और उस हिसाब से हम आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा करें जिससे कि आप लोगों को वो मिलता रहे जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं. आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए आप ये बढ़िया सा गाना इंजॉय करें. तो दोस्तों पनव जी जिस फिल्म की बात कर रहे थे उन्होंने मुझे बता दिया है मुन्ना भाई MBBS बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है ये। और हाँ मेरा भी यही मानना है कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो तो बिल्कुल ही आइकॉनिक था और सेकंड वाला काफ़ी लोगों को हो सकता है इतना अच्छा ना लगा हो। इसके अलावा एक और संदेश मुझे आया है विक्रम बड़वाल जी का जो कि लिखते हैं नमस्कार भव्या जी नमस्ते

और बता रहे हैं कि पुष्पा 1 इनको बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन पुष्पा 2 इनको बस शोर लगा था और कुछ खास पसंद नहीं आई। तो काफ़ी लोगों का ये कहना है, और इस तरह की जो ओपिनियंस होते हैं वो काफ़ी लोगों के होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जो फिल्म का फर्स्ट पार्ट होता है वो बहुत बढ़िया होता है और सेकंड इतना अच्छा नहीं होता है। खैर, आपको बता दूं कि आने वाले समय में कुछ ऐसी बहुत ही आइकॉनिक फिल्म्स हैं जिनका सेकेंड पार्ट आने वाला है। धमाल का सेकेंड पार्ट आने वाला है, और वेलकम जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फिल्म है, उसका वेलकम टू द जंगल एक पार्ट आ रहा है जो कि बिल्कुल वैसी तो नहीं है लेकिन उसी से इंस्पायर्ड है। इन दोनों फिल्म्स के ट्रेलर्स आ चुके हैं, आप ज़रूर देखें और बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये जो फिल्म्स हैं ये अपनी फर्स्ट फिल्म जितनी ही पॉपुलर और मज़ेदार होंगी। इसी के साथ आपसे आज के लिए इजाज़त लेना चाहूँगी। आप सभी के संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी चैनल पर, और खूब सारे गाने आपके लिए लेकर आऊँगी, और वो गाने आप ही के रिक्वेस्टेड गाने होंगे। तब तक आप बने रहें SBS हिंदी के साथ, हमारे साथ।

0: all the Bollywood hits you could ever want.
1: This is the Bollywood session on SBS South Asian.
2: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं।

0: थे। बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?
2: बस चल रहा है।
3: कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे धीरे धीरे धीरे ढल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दू क्या?

कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ।

लगता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया।

हार के वो जा रहा है बोली शबे बम गुजार के। वीरा है मैं कदा खुमो सावर उदास, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन।

कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

मेरा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार रात में वह भी एक रात हुआ है। आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।

0: hit. This is SBS South Asian.
1: चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

0: SBS South Asian.
1: तेरा इश्क मेरे दिल में शादाब है, तुझसे दूरी मेरे लिए तेजाब है।